0: वक्त कभी कभी किसी खत की तरह दिल के दरवाजे पर छोड़ जाता है कोई भूली बिसरी याद, कोई भूली सी दास्तां। लम्हा लम्हा एक पूरी तस्वीर निगाहों के सामने आ जाती है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है। सन 2000 तक पोलियो मुक्त विश्व का सपना साकार करने